वही जिंदगी वही मरहले वही कारवां वही रास्ते मगर अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं क्या हुए वो दिन।